0: 98.5 2000 FM.
1: अगर आप इस साल हज के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के खतरे को कम करें। इसे मर्स भी कहा जाता है और ये एक गैर मामूली मगर सांस की शदीद बीमारी है। इलामात में बुखार, खांसी, सांस लेने में नई तकलीफ और दस्त शामिल है। खुद को महफूज रखने के लिए बीमार अफराद ऊँट, ऊँट के कच्चे दूध, कच्चे गोश्त और पेशाब से दूर रहें और बाकायदगी से अपने हाथ धोते रहें। अगर सफ़र के दौरान आपकी तबीयत नासाज हो तो जहाज के अमले या एयरपोर्ट के अमले को मुतला करें। अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद आप में मर्ज़ की अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें और इन्हें अपनी साबका सफरी तफसीलात से आगाह करें। सफरी हदायात के लिए smarttraveler.gov.au मुलाहिजा करें। मज़ीद मालूमात के लिए health.gov.au/mers मुलाहिजा करें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के महकमा सेहत, मजूरी और बबूदो ज़ईफ अल अमरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड एजिंग की जानिब से एक पैगाम।
2: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर।